9 बजे और भारत में रात 9:30 पर शॉर्ट वेव्स 9440 किलोहर्ट्ज पर सुनी जा सकती हैं। मजीद तफसीलात के लिए हमारी वेबसाइट है nhk.jp/urdu। उर्दू नशरियात का आगाज हुआ चाहता है, हमारे साथ रहिएगा।

0: ये खबरें NHK वर्ल्ड जापान की उर्दू सर्विस से नशर की जा रही हैं। जापान, फिलिपाइन, अमेरिका और 11 दीगर ममालिक ने बहरह जनूबी चीन से मुतालिक बैन अलाक्वामी सालिसी ट्रिब्यूनल के एक दहाई कबल के फैसले को कबूल करने के चीन से अपने मुतालबे की तजदीद की है। 2016 में ट्रिब्यूनल ने तकरीबन इस पूरे समंदर पर चीन के दावों को कानूनी बुनियादों की कमी और बैन अलाक्वामी कानून की खिलाफ वर्जी की बिना पर मुस्तरद कर दिया था। फिलिपाइन ने मुकदमा दायर किया था। बीजिंग ने इस फैसले को मानने से इनकार कर दिया। 14 ममालिक ने इतवार को फैसले को 10 साल मुकम्मल होने पर एक मुश्तरका बयान जारी किया। बयान में फैसले को हतमी कानूनी तौर पर पाबंद और कतई करार दिया गया है। इसमें कहा गया है कि 14 ममालिक सालिसी ट्रिब्यूनल के फैसले की तौसीक करते हैं कि चीन के वसी समंदरी दावों की कोई कानूनी बुनियाद नहीं है। बयान में किसी भी ऐसे गैर मुस्तहकम या यकतरफा इकदाम की सख्त मुखालफत का इरादा किया गया जिससे खित्ते में अमन और इस्तेहकाम को खतरा लाहक हो। जापान के वजीर खारजा मोतेगी तोशिमित्सु ने एक बयान जारी किया जिसमें कहा गया है कि चीन का 2016 के फैसले को कबूल करने से इनकार तनाज़ात के पुरअमन हल के उसूल के खिलाफ है और आलमी बिरादरी में कानून की हुक्मरानी को नुकसान पहुंचाता है। चीन ने बहरह जनूबी चीन में अपने इलाकाई दावों को दुरुस्त करार दिया है, जबकि 14 ममालिक ने इस समंदर पर बैन अलाक़वामी सालिसी ट्रिब्यूनल के एक दहाई कबल किए गए फैसले को कबूल करने के अपने मुतालबे की तजदीद की है। चीन की वजारत खारजा ने इतवार को एक बयान जारी किया। ट्रिब्यूनल के फैसले ने, जिसे सालिसी अवार्ड के नाम से जाना जाता है, तकरीबन पूरे समंदर पर चीन के दावों को कानूनी बुनियादों की कमी और बैन अलाक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी करार देते हुए मुस्तरद कर दिया था। चीनी वजारत खारजा के बयान में कहा गया है के नाम नहाद अवार्ड रद्दी के टुकड़े के सिवा कुछ नहीं है, जो गैरकानूनी है और इसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है। उसने कहा कि चीन अवार्ड पर मबनी किसी भी दावे और इकदाम की मुखालफत करता है। उसने मजीद कहा कि इस अवार्ड से चीन की इलाकाई खुदमुख्तारी और बहरह जनूबी चीन में समंदरी मफादात मुतासर नहीं होंगे।
1: अब आज की अहम खबरों की सुर्खियां। अमरीकी फौज ने इतवार को ईरान के खिलाफ नए हमले शुरू किए, जिससे एक दिन कबल उसने मुल्क के खिलाफ एक हफ्ते के दौरान हमलों का सिलसिला मुकम्मल करने का ऐलान किया था। इतवार को एक सोशल मीडिया पोस्ट में अमरीकी वस्ती कमान ने ऐलान किया कि अमरीकी मशरकी वक्त के मुताबिक शाम 5 बजे उसकी फोर्सेज ने ईरान के खिलाफ मजीद हमले शुरू कर दिए, ताकि आपने हुरमत से आज़ादाना तौर पर गुजरने वाले गैर फौजी और तिजारती बहरी जहाज़ों पर हमलों की ईरान की सलाहियत को कम किया जा सके। और माहरीन की एक टीम ने कहा है कि वेनेजुएला में गुज़श्ता माह आए 2 शदीद जल्जलों की वजह से बड़ी तादाद में इमारतें तकरीबन अमूदी तौर पर मुनहदम हुई, जिसे पैनकेक कोलैप्स यानी तह दर तह इन्हदाम कहा जाता है। और न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक रूसी इंटेलिजेंस अफसरान ने यूक्रेन पर फौजी हमले के लिए हाईटेक सामान की खरीदारी की गरज से जापान को बतौर मरकज इस्तेमाल किया। NHK वर्ल्ड जापान की उर्दू सर्विस से खबरें खत्म हुईं।

खाना गोरे मा सिट वन प्रोटीन थपोजेबी लॉन्ग कोविड योगा लखना दिगु खंजा यारा फिचाओ तुरुगा काउचे छागे बारे ऐटक दोगा कठिका ओका नाउबीगा अकुटेशी जरी हा डी योगा लखना दि फिपवारे चाउयिंगु डाइए कुता पिनाइमे कुथों अतेत कुगु टी ट्विन थलु नाइजेगु फ्वनबे लाइटे लु ब्योबा बारे खम्या जबान वुन यु ताका इची सानाय ने तसै वुनजी दिगु तबावा बी एनडीए दि अतेत पिनसिन ने सेने सिमानगे चाउ शिनलिन टिनप्या केरे सुरे दरिंगु नासेमा नाइंगलू सैन दबाव बीएन सीमा खंगमु काउंसी हा इंगानी मा सीवे चिंपागे बी टोक्यो म्यू एरिया मा जीमारे गले लुखमु तुकु मा पेसी सोंशोमु शोचाई अपावन असीमा नीगो वंजी रीगो ती पेगे बारे दिलु म्यू बीएन ने जा लुबाउ 18000 लौ ती सोमी असाओ 4000 लौ हा लोंग मा प्याप्या व दामामु लोंग जान पेसी मे लु खामा या बारे दी सीजन गो लु ये थुटा दे म्यू प्या डेटा डी गा ए म्याजु ने लुने टाइ खान दे रे मा ngalin ayun khan sakit phyat taw kriya de tat sin mu yee ya bare ehdi kriya de ha tat sit da jaw phit paw de mi law mu de ko ga kwe ya ma thi ya mu shi lei me lo myon lin ya bare naw tham yin man jet tuku ga ei naw su a long ma a ne song 3 ya sa yi a sa sa ne a lwe gu tain nai ne ain na de tha shi bu ne ngalin lu yin pyu chaung mu ga ni ga kwe bu pri paw ga de ko khan khan myan myet shi de ja si bu phit par de pi du de ga be yan de ko तुरी को वाइन पेतना फिर शुमी ये आबेजें फिर लामे सेज़ू ने ड्रमा कामरारे तीसोमू ने असाउं डे पेसी सोशोमू को टेवो शोचाबू जापान सोया का युए थावर क्या ऐनेश के वॉच पंगा ट्रेनिंग को टेंसलू पिया भी नासे आपे रत्रशे आलू ने लगा मापी दूपी दा आलू बेकिंग जावा थे चनो चचो सोवा

ये NHK World Japan की हिंदी रेडियो सेवा है। ये प्रसारण शॉर्टवेव 11655 किलोहर्ट्ज़ पर दक्षिण पश्चिम एशिया क्षेत्र के लिए है। समय हुआ है UTC अपराह्न 3:30 बजे यानी भारतीय समयानुसार रात 9 बजे। हमारी प्रसारण सूची और ताजा समाचारों के लिए देखें हमारी वेबसाइट nhk.jp/hindi।

टोक्यो से एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा में आपका स्वागत है। जापान के समयानुसार 14 जुलाई मंगलवार रात 11:30 बजे गुरजिंदर सग्गू और वरुण तोमर से सुने समाचार। अमेरिकी केंद्रीय कमान सेंटकॉम ने सोमवार को बताया कि उसकी सेना ने लगातार तीसरी रात ईरान पर हमले किए। सोशल मीडिया पर सेंटकॉम की यह घोषणा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस बयान के तुरंत बाद आई है, जिसमें उन्होंने कहा था कि अमेरिका होर्मुज जलडमरू मध्य में ईरानी जहाज़ों पर नाकाबंदी दोबारा लागू कर रहा है। सेंटकॉम के अनुसार ये नाकाबंदी पूर्वी अमेरिका समयानुसार मंगलवार शाम 4 बजे से लगा दी जाएगी। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर नाकाबंदी के बारे में पोस्ट करते हुए कहा कि अब अमेरिका को होर्मुज जलडमरू मध्य का रक्षक कहा जाएगा। उन्होंने बताया कि ये नाकाबंदी ईरान आने जाने वाले जहाज़ों और ईरान के कारोबारी साझेदारों पर लागू होगी। अन्य सभी देशों के जहाज जलडमरू मध्य का उपयोग कर सकेंगे। लेकिन ट्रंप ने कहा कि अमेरिका इस जलमार्ग से गुजरने वाले सभी मालवाहक जहाज़ों पर 20% का शुल्क लगाएगा। उन्होंने कहा कि सुरक्षित आवागमन और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ये शुल्क आवश्यक है। इससे पहले ट्रंप ने फॉक्स न्यूज़ को ताज़ा वार्ता के बारे में बताते हुए दावा किया कि दोनों पक्षों ने रविवार को 11 घंटे की बातचीत की और सभी मुद्दों पर सहमति जताई। लेकिन ट्रंप ने कहा कि बाद में उन्होंने फ़ोन करके कहा कि उन्हें कुछ बदलाव करने की ज़रूरत है। ट्रंप ने कहा कि ईरान समझौतों का बार बार उल्लंघन कर चुका है और अब अमरीका बलपूर्वक जवाब देगा। उधर ईरान के सरकारी मीडिया ने सेना के ख़त्म अल अनबिया केंद्रीय मुख्यालय के प्रवक्ता इब्राहिम जुल्फ़ाकारी का बयान प्रसारित किया, जिसमें उनका कहना है कि ईरान अमेरिका को जलडमरू मध्य के प्रबंधन में हस्तक्षेप नहीं करने देगा। उन्होंने कहा, क्षेत्र के देशों के नेताओं को चेतावनी दी जाती है कि अगर किसी ने अमेरिका के साथ किसी भी प्रकार का सहयोग किया या अमेरिका की हमलावर सेना को किसी भी प्रकार की रसद संबंधी मदद दी, तो उस सहयोग या मदद को ईरान की संप्रभुता और राष्ट्रीय सुरक्षा के खिलाफ युद्ध माना जाएगा। वेनेजुएला में पिछले महीने आए भीषण भूकंपों में मरने वालों की संख्या बढ़कर 4,500 से अधिक हो गई है, जबकि तलाश अभियान अब भी जारी है। वेनेजुएला के अधिकारियों के अनुसार 24 जून को इस लातिन अमेरिकी देश में आए दो भूकंपों के बाद से अब तक 4,561 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। सबसे बुरी तरह प्रभावित तटीय राज्य ला गुआयरा में अनुपयोगी हो चुकी ऐसी इमारतों की संख्या लगभग 10,000 तक होने का अनुमान है, जो या तो पूरी तरह से तबाह हो चुकी हैं या बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हैं। सरकारी दल और स्थानीय निवासी लापता लोगों की तलाश में जुटे हैं, लेकिन भारी मशीनरी की कमी और रुक रुक कर हो रही भारी वर्षा के कारण उनके ये प्रयास बाधित हो रहे हैं। यूक्रेन और उसके यूरोपीय सहयोगियों का कहना है कि वे यूरोप को बैलिस्टिक मिसाइलों से बचाने के लिए एक वायु रक्षा गठबंधन बना रहे हैं। ये कदम ऐसे समय में उठाया जा रहा है जब यूक्रेन पर रूसी बैलिस्टिक मिसाइल हमले तेज़ होते जा रहे हैं। यूक्रेन के अलावा फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन सहित 9 देशों ने सोमवार को पेरिस में अपनी पहली बैठक की। उन्होंने माना कि रूस से अपनी रक्षा करने में यूक्रेन का अनुभव अद्वितीय रहा है।

0: भी शामिल है तब उत्पन्न होते हैं जब कोरोना वायरस संक्रमण शरीर के अंदर पहले से मौजूद किसी अन्य वायरस को सक्रिय कर देता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार कोविड-19 के लगभग 6% मरीजों में थकान, अवसाद और बालों का झड़ना जैसे लक्षण लंबे समय तक बने रहे। इन लक्षणों के पीछे के सटीक कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हैं। टोक्यो जिके विश्वविद्यालय के चिकित्सा महाविद्यालय के शोधकर्ताओं सहित इस समूह ने लक्षणों के उपचार के लिए आए 150 से अधिक रोगियों के रक्त के नमूनों की जाँच की। शोधकर्ताओं को लगभग 70% रोगियों के रक्त में सिथ-1 नामक प्रोटीन मिला। ये प्रोटीन तब उत्पन्न होता है जब शरीर में सुप्त अवस्था में मौजूद हर्पीस वायरस सक्रिय हो जाता है। जब शोधकर्ताओं ने चूहों में सिथ-1 का स्तर बढ़ाया तो उनमें न्यूरोट्रांसमीटर की कमी के कारण मस्तिष्क की कार्यक्षमता में कमी देखी गई, जिससे थकान और अवसाद जैसे लक्षण विकसित हुए। उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि लॉन्ग कोविड यानी लंबे समय तक चलने वाले कोविड के लक्षण तब उभरते हैं जब कोरोना वायरस संक्रमण एक सुप्त हर्पीस वायरस को सक्रिय कर देता है, जिससे शरीर में सिथ-1 प्रोटीन का निर्माण होता है। टोक्यो जिके विश्वविद्यालय की लेक्चरर ओका नाओमी ने बताया कि इन निष्कर्षों से एक ऐसी चिकित्सा पद्धति विकसित करने की संभावना बनती है जो सीधे कारण का समाधान करेगी। प्रधानमंत्री ताकायची सानाए और संबंधित मंत्रियों को आपदाओं से निपटने की तैयारी के लिए 10 वर्षीय योजना के बारे में जानकारी दी गई है। मंगलवार को हुई राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन परिषद की बैठक में मंत्रियों को टोक्यो क्षेत्र में संभावित महाभूकंप से होने वाले नुकसान को कम करने सहित अन्य उपायों के बारे में जानकारी दी गई। अनुमान है कि ऐसी आपदा से लगभग 18,000 लोगों की मौत हो सकती है और 4,02,000 इमारतें ध्वस्त हो सकती हैं या जलकर राख हो सकती हैं। इस योजना का उद्देश्य घनी आबादी वाले शहरी इलाकों में अधिकांश मकानों और अपार्टमेंट्स में भूकंप संवेदी सर्किट ब्रेकर लगाना है। उम्मीद है कि ये उपकरण बिजली से लगने वाली आग को रोकने में प्रभावी साबित होंगे। एक अन्य लक्ष्य ये सुनिश्चित करना है कि सभी घरों में कम से कम 3 दिन के भोजन पानी और पोर्टेबल शौचालय हों तथा भूकंप के दौरान फर्नीचर को गिरने से बचाने का इंतजाम किया गया हो। सरकार का लक्ष्य लोगों को आपदाओं को स्वयं की समस्या के रूप में देखने के लिए प्रोत्साहित करके अगले दशक में होने वाली मौतों और इमारतों को होने वाले नुकसान को आधा करना है। इसी के साथ NHK वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से समाचारों का ये अंक समाप्त होता है।
1: ये है NHK वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा। भारत में हमारे प्रसारण का आनंद आप ले सकते हैं रात 9 बजे से शॉर्टवेव 11,655 किलोहर्ट्ज पर। हमारा सजीव प्रसारण nhk.jp/hindi पर भी सुना जा सकता है। सुनते रहें NHK वर्ल्ड जापान।

0: एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा के भाषा शिक्षण कार्यक्रम बोलचाल की जापानी में आपका स्वागत है। मैं हूं चिन्मय दीक्षित।
1: और मैं हूं सुमिता भट्टाचार्य। तो आइए मजे से सीखें जापानी भाषा।
0: आज 20वें पाठ में व्यंजन या पेय पदार्थ में कोई चीज न डालने का अनुरोध करना सीखेंगे।
1: ताम वियतनाम से जापान आई विदेशी छात्रा है। वो चीनी फोटोग्राफर मिया के साथ होक्काइदो आई है। दोनों सापोरो शहर में एक मछली बाजार के पास ताजा समुद्री खाद्यों का आनंद लेने के लिए एक रेस्टोरेंट में आई हैं।
0: तो आइए सुनते हैं 20वें पाठ की बातचीत।
2: おすすめは

0: んですか？
1: このスペシャル海鮮丼がおすすめだよ。イクラとウニがたっぷり入ってるよ。
0: じゃあそれください。
2: 私も。あ、わさびは入れないでください。
1: わさび抜きね。そちらは？
0: 私はわさびをたくさん入れてください。
3: अब इस बातचीत को फिर से हर वाक्य के अर्थ के साथ सुनते हैं।
4: पहले मिया ने रसोइये से कहा,
0: おすすめは何ですか？
3: आपका सुझाव क्या है?
4: रसोइये ने मेन्यू की तरफ इशारा करते हुए कहा,
1: このスペシャル海鮮丼がおすすめだよ。
4: ये खास चावल और मछलियों वाला कटोरा बढ़िया है।
1: イクラとウニがたっぷり入ってるよ。
4: इसमें ढेर सारे इकुरा और उनी हैं।
3: तब मिया ने कहा,
0: जा सोरे कुदासाई।
3: तो फिर वही लूंगी।
4: उसे देखकर ताम ने भी वही व्यंजन मंगवाया।
2: वतशी मो।
3: मैं भी।
2: आ, वासाबी वा इरेनाई दे कुदासाई।
3: आ, वासाबी मत डालिएगा।
4: फिर रसोईये ने पुष्टि की,
1: वासाबी नुकी ने।
4: वासाबी के बिना ना?
3: उसके बाद उसने मिया से पूछा,
1: सोचिरा वा?
4: और आप?
3: तो मिया ने जवाब दिया,
0: वतशी वा वासाबी वो तक्सान इरेते कुदासाई।
3: मेरे वाले में ढेर सारी वासाबी डालिएगा।
4: इस बातचीत में काइसेंदोन और वासाबी का जिक्र है। काइसेंदोन का मतलब है चावल और मछलियों वाला कटोरा, और वासाबी एक पौधे की जड़ है। ये पिसी हुई सरसों जैसी झारदार होती है और कच्ची मछली के साथ खाने में अच्छी लगती है।
3: वासाबी की झार जीभ पर ही नहीं, नाक में भी महसूस होती है। मिया ने बहुत सारी वासाबी डलवाई है। लगता है उसे उसकी झार बहुत पसंद है।
4: आज का मुख्य वाक्य है,
2: वासाबी वा इरेनाई दे कुदासाई,
4: यानी वासाबी मत डालिएगा। ये वाक्य याद करके आप व्यंजन या पेय पदार्थ में कोई चीज न डालने का अनुरोध कर सकेंगे।
3: इस वाक्य में
5: वासाबी
3: का मतलब है पिसी हुई वासाबी, और
5: इरेनाई दे कुदासाई
3: का मतलब है मत डालिएगा।
4: आज के वाक्य में ध्यान देने वाली बात यह है कि व्यंजन या पेय पदार्थ में कुछ न डालने का अनुरोध करते समय क्रिया के नाई रूप का उपयोग करते हैं और उसके बाद लगाते हैं
5: देकुदासाई।
3: क्रिया के नाई रूप में अंत में नाई लगता है। ये क्रिया का नकारात्मक रूप है। वाक्य में
5: इरेनाई
3: क्रिया
5: इरेरु
3: यानी डालना का नाई रूप है।
4: उसके बाद लगाया है
5: देकुदासाई,
4: तो बन गया
5: इरेनाई दे कुदासाई।
4: जो चीज आपको नहीं चाहिए उसके नाम के बाद कारक वा लगाते हैं।
3: क्रिया के नाई रूप के बाद
5: दे कुदासाई
3: जोड़कर आप कुछ न करने का अनुरोध कर सकते हैं।
4: तो अब ये वाक्य बोलने का अभ्यास कर लीजिए।
5: इरेनाई दे कुदासाई, वासाबी वा इरेनाई दे कुदासाई।
3: अब एक कैफे में चल रही छोटी सी बातचीत सुनते हैं। इसमें ग्राहक पेय पदार्थ में कोई चीज न डालने का अनुरोध कर रहा है।
6: ऑरेंज जूस 1つ। 氷は入れないでください。
2: かしこまりました。
4: और अब समझ लेते हैं इसका अर्थ।
3: पहले आदमी ने कहा,
6: ऑरेंज जूस 1つ। 氷は入れないでください。
4: एक संतरे का रस, बर्फ मत डालिएगा।
5: ऑरेंज जूस
3: है संतरे का रस।
5: हितोत्सु
3: का अर्थ है एक, और
5: कोरी
3: का मतलब है बर्फ। उस आदमी को संतरे के रस में बर्फ नहीं चाहिए, इसलिए उसने कहा
5: कोरी वा इरेनाई दे कुदासाई।
4: जवाब में महिला ने कहा
2: काशिकुमारीमास्ता।
3: जी,
4: ये अच्छा या समझ गई कहने का औपचारिक तरीका है।
3: तो अब सुनिए और दोहराइए।
5: कोरी वा इरेनाई दे कुदासाई, कोरी वा इरेनाई दे कुदासाई।
4: अब आप भी वाक्य बनाने की कोशिश कीजिए। मान लीजिए कि आप दुकानदार से कहना चाहते हैं कि आपकी सलाद में ड्रेसिंग ना डाले। ड्रेसिंग को जापानी भाषा में कहते हैं
5: ड्रेसिंग। ड्रेसिंग।
4: इस वाक्य में क्रिया डालना का जापानी शब्द होगा
5: ककेरु
4: और उसका नाई रूप है
5: ककेनाई, ककेनाई।
4: तो कोशिश कीजिए।
7: ड्रेसिंग वा ककेनाई दे कुदासाई। ドレッシングはかけないでください。
3: अब मान लीजिए कि आप खाना ऑर्डर कर रहे हैं और दुकानदार से कहना चाहते हैं कि उसमें मिर्च न डाले। मिर्च को जापानी भाषा में कहते हैं
5: तोगराशी, तोगराशी।
3: उसका नाई रूप है
5: स्कावानाई, स्कावानाई।
3: तो वाक्य बनाने की कोशिश कीजिए।
8: 唐辛子は使わないでください。唐辛子は使わないでください。
4: और अब बारी है आज के सहज वाक्य की जो मिया की पंक्ति है। आप भी याद कर लीजिए।
0: おすすめは何ですか？
3: इसमें
5: おすすめ
3: का मतलब है सुझाव। तो
5: おすすめは何ですか？
3: का मतलब है आपका क्या सुझाव है। इसके जवाब में रसोइया आपको बताएगा कि रेस्तरां का सबसे लोकप्रिय व्यंजन कौन सा है या उसके अनुसार सबसे स्वादिष्ट व्यंजन कौन सा है।
4: तो अब उच्चारण का अभ्यास कर लीजिए।
5: おすすめは何ですか？
3: और अब आज की बातचीत एक बार फिर से सुन लेते हैं।
0: おすすめは何ですか？
1: このスペシャル海鮮丼がおすすめだよ。イクラとウニがたっぷり入ってるよ。
0: じゃあそれください。
2: 私も。あ、わさびは入れないでください。
1: わさび抜きね。そちらは？
0: 私はわさびをたくさん入れてください。
9: 食いしん坊カイトにお任せ。
4: अब बारी है अंश काइतो के साथ खाना पीना की। आज हम बता रहे हैं होक्काइडो के प्रसिद्ध समुद्री खाद्य पदार्थों के बारे में।
3: होक्काइडो जापान सागर, ओहोत्स्क सागर और प्रशांत महासागर से घिरा हुआ है। इस वजह से वहाँ का मत्स्य उद्योग बहुत समृद्ध है।
4: वहाँ केकड़ा, समुद्र फेनी, सामन, इकुरा यानी सामन के अंडे और अन्य बहुत सारे समुद्री खाद्य खूब मिलते हैं।
3: दुनिया भर में फैले खाने पीने के शौकीन लोग होक्काइडो के समुद्री खाद्यों का स्वाद पहचानते हैं। खास तौर पर यहाँ की सीपों का बड़ी संख्या में निर्यात होता है।
4: होक्काइडो के बंदरगाहों के पास बहुत सारे रेस्तरां हैं जहाँ कच्चे केकड़े या झींगा मछली के स्थानीय व्यंजनों का आनंद लिया जा सकता है। ताजा समुद्र फेनी और समुद्री शाही भी बहुत स्वादिष्ट होती है।
3: अगर आप होक्काइडो घूमने जाएं तो मौसमी समुद्री खाद्य का भी भरपूर लुत्फ जरूर उठाइएगा। दोस्तों आशा है बोलचाल की जापानी का आज का पाठ आपको पसंद आया होगा।
4: अगले पाठ में ताम और मिया होक्काइडो में घूमेंगी। तब तक के लिए सायोनारा।

ये NHK World Japan की हिंदी रेडियो सेवा है। ये प्रसारण शॉर्टवेव 11655 किलोहर्ट्ज पर दक्षिण पश्चिम एशिया क्षेत्र के लिए है। समय हुआ है UTC अपराह्न 3:30 बजे यानी भारतीय समयानुसार रात 9 बजे। हमारी प्रसारण सूची और ताजा समाचारों के लिए देखें हमारी वेबसाइट nhk.jp/hindi।

टोक्यो से एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा में आपका स्वागत है। जापान के समयानुसार 14 जुलाई मंगलवार रात 11:30 बजे गुरजिंदर सग्गू और वरुण तोमर से सुने समाचार। अमेरिकी केंद्रीय कमान सेंटकॉम ने सोमवार को बताया कि उसकी सेना ने लगातार तीसरी रात ईरान पर हमले किए। सोशल मीडिया पर सेंटकॉम की यह घोषणा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस बयान के तुरंत बाद आई है, जिसमें उन्होंने कहा था कि अमेरिका होर्मुज जलडमरू मध्य में ईरानी जहाज़ों पर नाकाबंदी दोबारा लागू कर रहा है। सेंटकॉम के अनुसार ये नाकाबंदी पूर्वी अमेरिका समयानुसार मंगलवार शाम 4 बजे से लगा दी जाएगी। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर नाकाबंदी के बारे में पोस्ट करते हुए कहा कि अब अमेरिका को होर्मुज जलडमरू मध्य का रक्षक कहा जाएगा। उन्होंने बताया कि ये नाकाबंदी ईरान आने जाने वाले जहाज़ों और ईरान के कारोबारी साझेदारों पर लागू होगी। अन्य सभी देशों के जहाज जलडमरू मध्य का उपयोग कर सकेंगे। लेकिन ट्रंप ने कहा कि अमेरिका इस जलमार्ग से गुजरने वाले सभी मालवाहक जहाज़ों पर 20% का शुल्क लगाएगा। उन्होंने कहा कि सुरक्षित आवागमन और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ये शुल्क आवश्यक है। इससे पहले ट्रंप ने फॉक्स न्यूज़ को ताज़ा वार्ता के बारे में बताते हुए दावा किया कि दोनों पक्षों ने रविवार को 11 घंटे की बातचीत की और सभी मुद्दों पर सहमति जताई। लेकिन ट्रंप ने कहा कि बाद में उन्होंने फ़ोन करके कहा कि उन्हें कुछ बदलाव करने की ज़रूरत है। ट्रंप ने कहा कि ईरान समझौतों का बार बार उल्लंघन कर चुका है और अब अमरीका बलपूर्वक जवाब देगा। उधर ईरान के सरकारी मीडिया ने सेना के ख़त्म अल अनबिया केंद्रीय मुख्यालय के प्रवक्ता इब्राहिम जुल्फ़ाकारी का बयान प्रसारित किया, जिसमें उनका कहना है कि ईरान अमेरिका को जलडमरू मध्य के प्रबंधन में हस्तक्षेप नहीं करने देगा। उन्होंने कहा, क्षेत्र के देशों के नेताओं को चेतावनी दी जाती है कि अगर किसी ने अमेरिका के साथ किसी भी प्रकार का सहयोग किया या अमेरिका की हमलावर सेना को किसी भी प्रकार की रसद संबंधी मदद दी, तो उस सहयोग या मदद को ईरान की संप्रभुता और राष्ट्रीय सुरक्षा के खिलाफ युद्ध माना जाएगा। वेनेजुएला में पिछले महीने आए भीषण भूकंपों में मरने वालों की संख्या बढ़कर 4,500 से अधिक हो गई है, जबकि तलाश अभियान अब भी जारी है। वेनेजुएला के अधिकारियों के अनुसार 24 जून को इस लातिन अमेरिकी देश में आए दो भूकंपों के बाद से अब तक 4,561 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। सबसे बुरी तरह प्रभावित तटीय राज्य ला गुआयरा में अनुपयोगी हो चुकी ऐसी इमारतों की संख्या लगभग 10,000 तक होने का अनुमान है, जो या तो पूरी तरह से तबाह हो चुकी हैं या बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हैं। सरकारी दल और स्थानीय निवासी लापता लोगों की तलाश में जुटे हैं, लेकिन भारी मशीनरी की कमी और रुक रुक कर हो रही भारी वर्षा के कारण उनके ये प्रयास बाधित हो रहे हैं। यूक्रेन और उसके यूरोपीय सहयोगियों का कहना है कि वे यूरोप को बैलिस्टिक मिसाइलों से बचाने के लिए एक वायु रक्षा गठबंधन बना रहे हैं। ये कदम ऐसे समय में उठाया जा रहा है जब यूक्रेन पर रूसी बैलिस्टिक मिसाइल हमले तेज़ होते जा रहे हैं। यूक्रेन के अलावा फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन सहित 9 देशों ने सोमवार को पेरिस में अपनी पहली बैठक की। उन्होंने माना कि रूस से अपनी रक्षा करने में यूक्रेन का अनुभव अद्वितीय रहा है। वे समूह को क्रियान्वित करने की दिशा में आगे बढ़ते हुए संयुक्त तकनीकी कार्यकारी बलों का गठन करना चाहते हैं। यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की ने आशा व्यक्त की कि उनका ये समूह अगले 12 महीनों के भीतर नई व्यवस्था विकसित कर सकता है, जिसका उपयोग पूरा यूरोप कर सकेगा।

0: ये समाचार एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से प्रसारित किए जा रहे हैं।
1: जापान के शोधकर्ताओं के निष्कर्षों से पता चलता है कि कोविड-19 पश्चात के दुष्प्रभाव, जिनमें थकान

0: वन नामक प्रोटीन मिला। ये प्रोटीन तब उत्पन्न होता है जब शरीर में सुप्त अवस्था में मौजूद हर्पीस वायरस सक्रिय हो जाता है। जब शोधकर्ताओं ने चूहों में सिथ वन का स्तर बढ़ाया तो उनमें न्यूरोट्रांसमीटर की कमी के कारण मस्तिष्क की कार्यक्षमता में कमी देखी गई, जिससे थकान और अवसाद जैसे लक्षण विकसित हुए। उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि लॉन्ग कोविड यानी लंबे समय तक चलने वाले कोविड के लक्षण तब उभरते हैं जब कोरोना वायरस संक्रमण एक सुप्त हर्पीस वायरस को सक्रिय कर देता है, जिससे शरीर में सिथवन प्रोटीन का निर्माण होता है। टोक्यो जिकेई विश्वविद्यालय की लेक्चरर ओका नाओमी ने बताया कि इन निष्कर्षों से एक ऐसी चिकित्सा पद्धति विकसित करने की संभावना बनती है जो सीधे कारण का समाधान करेगी। प्रधानमंत्री ताकायची सानाए और संबंधित मंत्रियों को आपदाओं से निपटने की तैयारी के लिए 10 वर्षीय योजना के बारे में जानकारी दी गई है। मंगलवार को हुई राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन परिषद की बैठक में मंत्रियों को टोक्यो क्षेत्र में संभावित महाभूकंप से होने वाले नुकसान को कम करने सहित अन्य उपायों के बारे में जानकारी दी गई। अनुमान है कि ऐसी आपदा से लगभग 18,000 लोगों की मौत हो सकती है और 4,02,000 इमारतें ध्वस्त हो सकती हैं या जलकर राख हो सकती हैं। इस योजना का उद्देश्य घनी आबादी वाले शहरी इलाकों में अधिकांश मकानों और अपार्टमेंट्स में भूकंप संवेदी सर्किट ब्रेकर लगाना है। उम्मीद है कि ये उपकरण बिजली से लगने वाली आग को रोकने में प्रभावी साबित होंगे। एक अन्य लक्ष्य ये सुनिश्चित करना है कि सभी घरों में कम से कम 3 दिन के भोजन पानी और पोर्टेबल शौचालय हों तथा भूकंप के दौरान फर्नीचर को गिरने से बचाने का इंतजाम किया गया हो। सरकार का लक्ष्य लोगों को आपदाओं को स्वयं की समस्या के रूप में देखने के लिए प्रोत्साहित करके अगले दशक में होने वाली मौतों और इमारतों को होने वाले नुकसान को आधा करना है। इसी के साथ एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से समाचारों का ये अंक समाप्त होता है।
1: ये है एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा। भारत में हमारे प्रसारण का आनंद आप ले सकते हैं रात 9 बजे से शॉर्टवेव 11,655 किलोहर्ट्ज़ पर। हमारा सजीव प्रसारण nhk.jp/hindi पर भी सुना जा सकता है। सुनते रहें NHK वर्ल्ड जापान।

0: एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा के भाषा शिक्षण कार्यक्रम बोलचाल की जापानी में आपका स्वागत है। मैं हूं चिन्मय दीक्षित।
1: और मैं हूं सुमिता भट्टाचार्य जी। तो आइए मजे से सीखें जापानी भाषा।
0: आज 20वें पाठ में व्यंजन या पेय पदार्थ में कोई चीज न डालने का अनुरोध करना सीखेंगे।
1: ताम वियतनाम से जापान आई विदेशी छात्रा है। वो चीनी फोटोग्राफर मिया के साथ होक्काइदो आई है। दोनों सापोरो शहर में एक मछली बाजार के पास ताजा समुद्री खाद्यों का आनंद लेने के लिए एक रेस्टोरेंट में आई हैं।
0: तो आइए सुनते हैं 20वें पाठ की बातचीत।
2: ओसुसुमे वा नान देसु का?
3: कोनो स्पेशल काइसेन डोन गा ओसुसुमे दा यो। इकुरा तो उनी गा ताप्पुरी हाइट्टे रु यो।
2: जा सोरे कुदासाई। वातासी मो わさびは入れないでください。
3: わさび抜きね。そちらは？
2: 私はわさびをたくさん入れてください。
1: अब इस बातचीत को फिर से हर वाक्य के अर्थ के साथ सुनते हैं।
0: पहले मिया ने रसोईये से कहा,
2: おすすめは何ですか？
1: आपका सुझाव क्या है?
0: रसोईये ने मेन्यू की तरफ इशारा करते हुए कहा,
3: このスペシャル海鮮丼がおすすめだよ。

0: ये खास चावल और मछलियों वाला कटोरा बढ़िया है।
1: इकुरा तो उनी का तप्पुरी हाइट तेरे यो।
0: इसमें ढेर सारे इकुरा और उनी है।
2: तब मिया ने कहा,
3: जा सोरे कुदासाई।
2: तो फिर वही लूंगी।
0: उसे देखकर ताम ने भी वही व्यंजन मंगवाया।
3: वतशी मो।
2: मैं भी।
3: आ, वासाबी वा इरेनाई दे कुदासाई।
2: आ, वासाबी मत डालिएगा।
0: फिर रसोइये ने पुष्टि की,
1: वासाबी नुकी ने।
0: वासाबी के बिना ना।
2: उसके बाद उसने मिया से पूछा,
1: सोचिरा वा?
0: और आप?
2: तो मिया ने जवाब दिया,
3: वतशी वा वासाबी ओ तक्सान इरेते कुदासाई।
2: मेरे वाले में ढेर सारी वासाबी डालिएगा।
0: इस बातचीत में काइसेंदोन और वासाबी का जिक्र है। काइसेंदोन का मतलब है चावल और मछलियों वाला कटोरा, और वासाबी एक पौधे की जड़ है। ये पिसी हुई सरसों जैसी झारदार होती है और कच्ची मछली के साथ खाने में अच्छी लगती है।
2: वासाबी की झार जीभ पर ही नहीं नाक में भी महसूस होती है। मिया ने बहुत सारी वासाबी डलवाई है। लगता है उसे उसकी झार बहुत पसंद है।
0: आज का मुख्य वाक्य है
3: वासाबी वा इरेनाई दे कुदासाई,
0: यानी वासाबी मत डालिएगा। ये वाक्य याद करके आप व्यंजन या पेय पदार्थ में कोई चीज न डालने का अनुरोध कर सकेंगे।
2: इस वाक्य में
4: वासाबी
2: का मतलब है पिसी हुई वासाबी और
4: इरेनाई दे कुदासाई
2: का मतलब है मत डालिएगा।
0: आज के वाक्य में ध्यान देने वाली बात यह है कि व्यंजन या पेय पदार्थ में कुछ न डालने का अनुरोध करते समय क्रिया के नाई रूप का उपयोग करते हैं और उसके बाद लगाते हैं
4: देखुदासाई।
2: क्रिया के नाई रूप में अंत में नाई लगता है। ये क्रिया का नकारात्मक रूप है। वाक्य में
4: इरेनाई
2: क्रिया
4: इरेरु
2: यानी डालना का नाई रूप है।
0: उसके बाद लगाया है
4: देखुदासाई
0: तो बन गया
4: इरेनाई दे कुदासाई।
0: जो चीज आपको नहीं चाहिए उसके नाम के बाद कारक वा लगाते हैं।
2: क्रिया के नाई रूप के बाद
4: दे कुदासाई
2: जोड़कर आप कुछ न करने का अनुरोध कर सकते हैं।
0: तो अब ये वाक्य बोलने का अभ्यास कर लीजिए।
4: इरेनाई दे कुदासाई वासाबी वा इरेनाई दे कुदासाई।
2: अब एक कैफे में चल रही छोटी सी बातचीत सुनते हैं। इसमें ग्राहक पेय पदार्थ में कोई चीज न डालने का अनुरोध कर रहा है।
5: ओरेंज जूस 1つ कोरी वा इरेनाई दे कुदासाई।
3: かしこまりました।
0: और अब समझ लेते हैं इसका अर्थ।
2: पहले आदमी ने कहा
5: ओरेंज जूस 1つ कोरी वा इरेनाई दे कुदासाई।
0: एक संतरे का रस, बर्फ मत डालिएगा।
4: ऑरेंज जूस
2: है संतरे का रस।
4: हितोत्सु
2: का अर्थ है एक और
4: कोरी
2: का मतलब है बर्फ। उस आदमी को संतरे के रस में बर्फ नहीं चाहिए, इसलिए उसने कहा
4: कोरी वा इरेनाई दे कुदासाई।
0: जवाब में महिला ने कहा
3: かしこまりました।
2: जी,
0: ये अच्छा या समझ गई कहने का औपचारिक तरीका है।
2: तो अब सुनिए और दोहराइए।
4: कोरी वा इरेनाई दे कुदासाई। कोरी वा इरेनाई दे कुदासाई।
0: अब आप भी वाक्य बनाने की कोशिश कीजिए। मान लीजिए कि आप दुकानदार से कहना चाहते हैं कि आपकी सलाद में ड्रेसिंग ना डाले। ड्रेसिंग को जापानी भाषा में कहते हैं
4: ड्रेसिंग। ड्रेसिंग।
0: इस वाक्य में क्रिया डालना का जापानी शब्द होगा
4: かける
0: और उसका नाई रूप है
4: かけない। かけない।
0: तो कोशिश कीजिए।
3: ドレッシング वा かけないでください। ドレッシング वा かけないでください।
2: अब मान लीजिए कि आप खाना ऑर्डर कर रहे हैं और दुकानदार से कहना चाहते हैं कि उसमें मिर्च ना डाले। मिर्च को जापानी भाषा में कहते हैं
4: तोगाराशी। 唐辛子。
2: उसका नई रूप है
4: 使わない。
2: तो वाक्य बनाने की कोशिश कीजिए।
5: 唐辛子は使わないでください。唐辛子は使わないでください。
0: और अब बारी है आज के सहज वाक्य की, जो मिया की पंक्ति है, आप भी याद कर लीजिए।
3: ओसुसुमे वा नान देसु का?
2: इसमें
4: ओसुसुमे
2: का मतलब है सुझाव, तो
4: ओसुसुमे वा नान देसु
2: का मतलब है आपका क्या सुझाव है। इसके जवाब में रसोईया आपको बताएगा कि रेस्तरां का सबसे लोकप्रिय व्यंजन कौन सा है या उसके अनुसार सबसे स्वादिष्ट व्यंजन कौन सा है।
0: तो अब उच्चारण का अभ्यास कर लीजिए।
4: ओसुसुमे वा नान देसु का?
2: और अब आज की बातचीत एक बार फिर से सुन लेते हैं।
3: ओसुसुमे वा नान देसु का?
1: このスペシャル海鮮丼がおすすめだよ。イクラとウニがたっぷり入ってるよ。
3: じゃあそれください。私も。あ、わさびは入れないでください。
1: わさび抜きね。そちらは？
3: 私はわさびをたくさん入れてください。
6: 食いしん坊カイトにお任せ。
0: अब बारी है अंश काइतो के साथ खाना पीना की। आज हम बता रहे हैं होक्काइडो के प्रसिद्ध समुद्री खाद्य पदार्थों के बारे में।
2: होक्काइडो जापान सागर, ओहोत्स्क सागर और प्रशांत महासागर से घिरा हुआ है। इस वजह से वहाँ का मत्स्य उद्योग बहुत समृद्ध है।
0: वहाँ केकड़ा, समुद्र फेनी, सामन, इकुरा यानी सामन के अंडे और अन्य बहुत सारे समुद्री खाद्य खूब मिलते हैं।
2: दुनिया भर में फैले खाने पीने के शौकीन लोग होक्काइडो के समुद्री खाद्यों का स्वाद पहचानते हैं। खास तौर पर यहाँ की सीपों का बड़ी संख्या में निर्यात होता है।
0: होक्काइडो के बंदरगाहों के पास बहुत सारे रेस्तरां हैं, जहाँ कच्चे केकड़े या झींगा मछली के स्थानीय व्यंजनों का आनंद लिया जा सकता है। ताजा समुद्र फेनी और समुद्री शाही भी बहुत स्वादिष्ट होती है।
2: अगर आप होक्काइडो घूमने जाएं, तो मौसमी समुद्री खाद्य का भी भरपूर लुत्फ जरूर उठाइएगा। दोस्तों, आशा है बोलचाल की जापानी का आज का पाठ आपको पसंद आया होगा।
0: अगले पाठ में ताम और मिया होक्काइडो में घूमेंगी। तब तक के लिए सायोनारा।

ये एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी रेडियो सेवा है। ये प्रसारण शॉर्टवेव 11655 किलोहर्ट्ज पर दक्षिण पश्चिम एशिया क्षेत्र के लिए है। समय हुआ है यूटीसी अपराह्न 3:30 बजे यानी भारतीय समयानुसार रात 9 बजे। हमारी प्रसारण सूची और ताजा समाचारों के लिए देखें हमारी वेबसाइट nhk.jp/hindi।

टोक्यो से एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा में आपका स्वागत है। जापान के समयानुसार 14 जुलाई मंगलवार रात 11:30 बजे गुरजिंदर सग्गू और वरुण तोमर से सुने समाचार। अमेरिकी केंद्रीय कमान सेंटकॉम ने सोमवार को बताया कि उसकी सेना ने लगातार तीसरी रात ईरान पर हमले किए। सोशल मीडिया पर सेंटकॉम की यह घोषणा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस बयान के तुरंत बाद आई है, जिसमें उन्होंने कहा था कि अमेरिका होर्मुज जलडमरू मध्य में ईरानी जहाज़ों पर नाकाबंदी दोबारा लागू कर रहा है। सेंटकॉम के अनुसार ये नाकाबंदी पूर्वी अमेरिका समयानुसार मंगलवार शाम 4 बजे से लगा दी जाएगी। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर नाकाबंदी के बारे में पोस्ट करते हुए कहा कि अब अमेरिका को होर्मुज जलडमरू मध्य का रक्षक कहा जाएगा। उन्होंने बताया कि यह नाकाबंदी ईरान आने जाने वाले जहाज़ों और ईरान के कारोबारी साझेदारों पर लागू होगी। अन्य सभी देशों के जहाज़ जलडमरू मध्य का उपयोग कर सकेंगे। लेकिन ट्रंप ने कहा कि अमेरिका इस जलमार्ग से गुजरने वाले सभी मालवाहक जहाज़ों पर 20% का शुल्क लगाएगा। उन्होंने कहा कि सुरक्षित आवागमन और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ये शुल्क आवश्यक है। इससे पहले ट्रंप ने फॉक्स न्यूज़ को ताज़ा वार्ता के बारे में बताते हुए दावा किया कि दोनों पक्षों ने रविवार को 11 घंटे की बातचीत की और सभी मुद्दों पर सहमति जताई। लेकिन ट्रंप ने कहा कि बाद में उन्होंने फ़ोन करके कहा कि उन्हें कुछ बदलाव करने की ज़रूरत है। ट्रंप ने कहा कि ईरान समझौतों का बार बार उल्लंघन कर चुका है और अब अमरीका बलपूर्वक जवाब देगा।

उधर ईरान के सरकारी मीडिया ने सेना के खतम अल अनबिया केंद्रीय मुख्यालय के प्रवक्ता इब्राहिम जुल्फ़ाकारी का बयान प्रसारित किया, जिसमें उनका कहना है कि ईरान अमेरिका को जलडमरू मध्य के प्रबंधन में हस्तक्षेप नहीं करने देगा। उन्होंने कहा, क्षेत्र के देशों के नेताओं को चेतावनी दी जाती है कि अगर किसी ने अमेरिका के साथ किसी भी प्रकार का सहयोग किया या अमेरिका की हमलावर सेना को किसी भी प्रकार की रसद संबंधी मदद दी, तो उस सहयोग या मदद को ईरान की संप्रभुता और राष्ट्रीय सुरक्षा के खिलाफ युद्ध माना जाएगा। वेनेजुएला में पिछले महीने आए भीषण भूकंपों में मरने वालों की संख्या बढ़कर 4,500 से अधिक हो गई है, जबकि तलाश अभियान अब भी जारी है। वेनेजुएला के अधिकारियों के अनुसार 24 जून को इस लातिन अमेरिकी देश में आए दो भूकंपों के बाद से अब तक 4,561 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। सबसे बुरी तरह प्रभावित तटीय राज्य ला गुआयरा में अनुपयोगी हो चुकी ऐसी इमारतों की संख्या लगभग 10,000 तक होने का अनुमान है, जो या तो पूरी तरह से तबाह हो चुकी हैं या बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हैं। सरकारी दल और स्थानीय निवासी लापता लोगों की तलाश में जुटे हैं, लेकिन भारी मशीनरी की कमी और रुक रुक कर हो रही भारी वर्षा के कारण उनके ये प्रयास बाधित हो रहे हैं। यूक्रेन और उसके यूरोपीय सहयोगियों का कहना है कि वे यूरोप को बैलिस्टिक मिसाइलों से बचाने के लिए एक वायु रक्षा गठबंधन बना रहे हैं। ये कदम ऐसे समय में उठाया जा रहा है जब यूक्रेन पर रूसी बैलिस्टिक मिसाइल हमले तेज होते जा रहे हैं। यूक्रेन के अलावा फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन सहित 9 देशों ने सोमवार को पेरिस में अपनी पहली बैठक की। उन्होंने माना कि रूस से अपनी रक्षा करने में यूक्रेन का अनुभव अद्वितीय रहा है। वे समूह को क्रियान्वित करने की दिशा में आगे बढ़ते हुए संयुक्त तकनीकी कार्यकारी बलों का गठन करना चाहते हैं। यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने आशा व्यक्त की कि उनका ये समूह अगले 12 महीनों के भीतर नई व्यवस्था विकसित कर सकता है, जिसका उपयोग पूरा यूरोप कर सकेगा।

0: ये समाचार एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से प्रसारित किए जा रहे हैं।
1: जापान के शोधकर्ताओं के निष्कर्षों से पता चलता है कि कोविड-19 पश्चात के दुष्प्रभाव, जिनमें थकान भी शामिल है, तब उत्पन्न होते हैं जब कोरोना वायरस संक्रमण शरीर के अंदर पहले से मौजूद किसी अन्य वायरस को सक्रिय कर देता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार कोविड-19 के लगभग 6% मरीजों में थकान, अवसाद और बालों का झड़ना जैसे लक्षण लंबे समय तक बने रहे। इन लक्षणों के पीछे के सटीक कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हैं। टोक्यो जिके विश्वविद्यालय के चिकित्सा महाविद्यालय के शोधकर्ताओं सहित इस समूह ने लक्षणों के उपचार के लिए आए 150 से अधिक रोगियों के रक्त के नमूनों की जाँच की। शोधकर्ताओं को लगभग 70% रोगियों के रक्त में सिथ-1 नामक प्रोटीन मिला। ये प्रोटीन तब उत्पन्न होता है जब शरीर में सुप्त अवस्था में मौजूद हर्पीस वायरस सक्रिय हो जाता है। जब शोधकर्ताओं ने चूहों में सिथ-1 का स्तर बढ़ाया तो उनमें न्यूरोट्रांसमीटर की कमी के कारण मस्तिष्क की कार्यक्षमता में कमी देखी गई, जिससे थकान और अवसाद जैसे लक्षण विकसित हुए। उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि लॉन्ग कोविड यानी लंबे समय तक चलने वाले कोविड के लक्षण तब उभरते हैं जब कोरोना वायरस संक्रमण एक सुप्त हर्पीस वायरस को सक्रिय कर देता है, जिससे शरीर में सिथ-1 प्रोटीन का निर्माण होता है। टोक्यो जिके विश्वविद्यालय की लेक्चरर ओका नाओमी ने बताया कि इन निष्कर्षों से एक ऐसी चिकित्सा पद्धति विकसित करने की संभावना बनती है जो सीधे कारण का समाधान करेगी। प्रधानमंत्री ताकाइची सानाए और संबंधित मंत्रियों को आपदाओं से निपटने की तैयारी के लिए 10 वर्षीय योजना के बारे में जानकारी दी गई है। मंगलवार को हुई राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन परिषद की बैठक में मंत्रियों को टोक्यो क्षेत्र में संभावित महाभूकंप से होने वाले नुकसान को कम करने सहित अन्य उपायों के बारे में जानकारी दी गई। अनुमान है कि ऐसी आपदा से लगभग 18,000 लोगों की मौत हो सकती है और 4,02,000 इमारतें ध्वस्त हो सकती हैं या जलकर राख हो सकती हैं।

0: इसी के साथ NHK World Japan की हिंदी सेवा से समाचारों का ये अंक समाप्त होता है।
1: ये है NHK World Japan की हिंदी सेवा। भारत में हमारे प्रसारण का आनंद आप ले सकते हैं रात 9 बजे से शॉर्टवेव 11655 किलोहर्ट्ज़ पर। हमारा सजीव प्रसारण nhk.jp/hindi पर भी सुना जा सकता है। सुनते रहें NHK World Japan।

0: एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा के भाषा शिक्षण कार्यक्रम बोलचाल की जापानी में आपका स्वागत है। मैं हूं चिन्मय दीक्षित।
1: और मैं हूं सुमिता भट्टाचार्य जी। तो आइए मजे से सीखें जापानी भाषा।
0: आज 20वें पाठ में व्यंजन या पेय पदार्थ में कोई चीज न डालने का अनुरोध करना सीखेंगे।
1: ताम वियतनाम से जापान आई विदेशी छात्रा है। वो चीनी फोटोग्राफर मिया के साथ होक्काइडो आई है। दोनों सापोरो शहर में एक मछली बाजार के पास ताजा समुद्री खाद्यों का आनंद लेने के लिए एक रेस्टोरेंट में आई हैं।
0: तो आइए सुनते हैं 20वें पाठ की बातचीत।
2: ओसुसुमे वा नान देसु का?
3: कोनो स्पेशल काइसेन डो गा ओसुसुमे दा यो। इकुरा तो उनी गा ताप्पुरी हाइट्टे रु यो।
2: जा सोरे कुदासाई। वातासी मो わさびは入れないでください。
3: わさび抜きね。そちらは？
2: 私はわさびをたくさん入れてください。
1: अब इस बातचीत को फिर से हर वाक्य के अर्थ के साथ सुनते हैं।
0: पहले मिया ने रसोइये से कहा,
2: おすすめは何ですか？
1: आपका सुझाव क्या है?
0: रसोइये ने मेन्यू की तरफ इशारा करते हुए कहा,
3: このスペシャル海鮮丼がおすすめだよ。
0: ये खास चावल और मछलियों वाला कटोरा बढ़िया है।
3: इकुरा तो उनी का ताप्पुरी हाइट्टे रु यो।
0: इसमें ढेर सारे इकुरा और उनी है।
1: तब मिया ने कहा,
2: जा सोरे कुदासाई।
1: तो फिर वही लूंगी।
0: उसे देखकर ताम ने भी वही व्यंजन मंगवाया।
2: वतासी मो।
1: मैं भी।
2: वासाबी वा इरेनाई दे कुदासाई।
1: वासाबी मत डालिएगा।
0: फिर रसोइये ने पुष्टि की,
3: वासाबी नुकी ने।
0: वासाबी के बिना ना।
1: उसके बाद उसने मिया से पूछा,
3: सोचिरा वा?
0: और आप?
1: तो मिया ने जवाब दिया,
2: वातासी वा वासाबी ओ ताकुसान इरेते कुदासाई।
1: मेरे वाले में ढेर सारी वासाबी डालिएगा।
0: इस बातचीत में काइसेनडोन और वासाबी का जिक्र है। काइसेनडोन का मतलब है चावल और मछलियों वाला कटोरा, और वासाबी एक पौधे की जड़ है। ये पिसी हुई सरसों जैसी झारदार होती है और कच्ची मछली के साथ खाने में अच्छी लगती है।
1: वासाबी की झार जीभ पर ही नहीं नाक में भी महसूस होती है। मिया ने बहुत सारी वासाबी डलवाई है। लगता है उसे उसकी झार बहुत पसंद है।
0: आज का मुख्य वाक्य है,
2: वासाबी वा इरेनाई दे कुदासाई,
0: यानी वासाबी मत डालिएगा। ये वाक्य याद करके आप व्यंजन या पेय पदार्थ में कोई चीज न डालने का अनुरोध कर सकेंगे।
1: इस वाक्य में
4: वासाबी
1: का मतलब है पिसी हुई वासाबी और
4: इरेनाई दे कुदासाई
1: का मतलब है मत डालिएगा।
0: आज के वाक्य में ध्यान देने वाली बात यह है कि व्यंजन या पेय पदार्थ में कुछ न डालने का अनुरोध करते समय क्रिया के नाई रूप का उपयोग करते हैं और उसके बाद लगाते हैं
4: देकुदासाई।
1: क्रिया के नाई रूप में अंत में नाई लगता है। ये क्रिया का नकारात्मक रूप है। वाक्य में
4: इरेनाई
1: क्रिया
4: इरेरु
1: यानी डालना का नाई रूप है।
0: उसके बाद लगाया है

0: てください。
1: तो बन गया
0: इरेनाई दे कुदासाई।
1: जो चीज आपको नहीं चाहिए उसके नाम के बाद कारक वा लगाते हैं।
2: क्रिया के नाई रूप के बाद
0: दे कुदासाई
2: जोड़कर आप कुछ न करने का अनुरोध कर सकते हैं।
1: तो अब ये वाक्य बोलने का अभ्यास कर लीजिए।
0: इरेनाई दे कुदासाई। वासाबी वा इरेनाई दे कुदासाई।
2: अब एक कैफे में चल रही छोटी सी बातचीत सुनते हैं। इसमें ग्राहक पेय पदार्थ में कोई चीज न डालने का अनुरोध कर रहा है।
3: ऑरेंज जूस 1つ氷は入れないでください。
4: かしこまりました。
1: और अब समझ लेते हैं इसका अर्थ।
2: पहले आदमी ने कहा
3: ऑरेंज जूस 1つ氷は入れないでください。
1: एक संतरे का रस, बर्फ मत डालिएगा।
0: ऑरेंज जूस
2: है संतरे का रस।
0: हितोत्सु
2: का अर्थ है एक और
0: कोरी
2: का मतलब है बर्फ। उस आदमी को संतरे के रस में बर्फ नहीं चाहिए, इसलिए उसने कहा
0: कोरी वा इरेनाई दे कुदासाई।
1: जवाब में महिला ने कहा
4: काशिकुमारीमास्ता।
2: जी,
1: ये अच्छा या समझ गई कहने का औपचारिक तरीका है।
2: तो अब सुनिए और दोहराइए।
0: कोरी वा इरेनाई दे कुदासाई। कोरी वा इरेनाई दे कुदासाई।
1: अब आप भी वाक्य बनाने की कोशिश कीजिए। मान लीजिए कि आप दुकानदार से कहना चाहते हैं कि आपकी सलाद में ड्रेसिंग ना डाले। ड्रेसिंग को जापानी भाषा में कहते हैं
0: ड्रेसिंग। ड्रेसिंग।
1: इस वाक्य में क्रिया डालना का जापानी शब्द होगा
0: काकेरु
1: और उसका नाई रूप है
0: काकेनाई। काकेनाई।
1: तो कोशिश कीजिए।
4: ドレッシングはかけないでください。ドレッシングはかけないでください。
2: अब मान लीजिए कि आप खाना ऑर्डर कर रहे हैं और दुकानदार से कहना चाहते हैं कि उसमें मिर्च न डाले। मिर्च को जापानी भाषा में कहते हैं
0: तोगाराशी। तोगाराशी।
2: उसका नाई रूप है
0: त्सुकावानाई। त्सुकावानाई।
2: तो वाक्य बनाने की कोशिश कीजिए।
3: 唐辛子は使わないでください。唐辛子は使わないでください。
1: और अब बारी है आज के सहज वाक्य की जो मिया की पंक्ति है। आप भी याद कर लीजिए।
4: おすすめは何ですか？
2: इसमें
0: おすすめ
2: का मतलब है सुझाव। तो
0: おすすめは何ですか？
2: का मतलब है आपका क्या सुझाव है। इसके जवाब में रसोइया आपको बताएगा कि रेस्तरां का सबसे लोकप्रिय व्यंजन कौन सा है या उसके अनुसार सबसे स्वादिष्ट व्यंजन कौन सा है।
1: तो अब उच्चारण का अभ्यास कर लीजिए।
0: おすすめは何ですか？
2: और अब आज की बातचीत एक बार फिर से सुन लेते हैं।
4: おすすめは何ですか？
5: このスペシャル海鮮丼がおすすめだよ。イクラとウニがたっぷり入ってるよ。
4: じゃあそれください。私も。あ、わさびは入れないでください。
5: わさび抜きね。そちらは？
4: 私はわさびをたくさん入れてください。
6: 食いしん坊カイトにお任せ。
1: अब बारी है अंश काइतो के साथ खाना पीना की। आज हम बता रहे हैं होक्काइडो के प्रसिद्ध समुद्री खाद्य पदार्थों के बारे में।
2: होक्काइडो जापान सागर, ओहोत्स्क सागर और प्रशांत महासागर से घिरा हुआ है। इस वजह से वहाँ का मत्स्य उद्योग बहुत समृद्ध है।
1: वहाँ केकड़ा, समुद्र फेनी, सामन, इकुरा यानी सामन के अंडे और अन्य बहुत सारे समुद्री खाद्य खूब मिलते हैं।
2: दुनिया भर में फैले खाने पीने के शौकीन लोग होक्काइडो के समुद्री खाद्यों का स्वाद पहचानते हैं। खास तौर पर यहाँ की सीपों का बड़ी संख्या में निर्यात होता है।
1: होक्काइडो के बंदरगाहों के पास बहुत सारे रेस्तरां हैं, जहाँ कच्चे केकड़े या झींगा मछली के स्थानीय व्यंजनों का आनंद लिया जा सकता है। ताज़ा समुद्र फेनी और समुद्री शाही भी बहुत स्वादिष्ट होती हैं।
2: अगर आप होक्काइडो घूमने जाएं, तो मौसमी समुद्री खाद्य का भी भरपूर लुत्फ जरूर उठाइएगा। दोस्तों, आशा है बोलचाल की जापानी का आज का पाठ आपको पसंद आया होगा।
1: अगले पाठ में ताम और मिया होक्काइडो में घूमेंगी। तब तक के लिए
2: सायोनारा।